0: ल है अब काम डुब्यो जानुपर्छ।
1: उसो भए बिदा माग्नु पर्ला है। ल है लिम्बुनी कान्छी सेवारो
2: सेवारो।
1: ल है मेरो लिम्बुनी कान्छी सेवारो।
3: लिम्बुनी को लिम्बुनी कसले भन्नु लिम्बु भनेर म गर
0: बिचारा इट्स ओके म्यान।

Elimbu FM 89.6 MHz. हेलम्बु FM 89.6 MHz मा अब तपाईँ सुन्न सक्नुहुन्छ हेलम्बु खबर।

0: Lumbu FM 89.6 MHz.
1: अब रंग थेसुमुला रेडियो कार्यक्रम स्पार्क माई फेट नला विश्वासी समक बसुगो
2: टिका रंगदा एक्लो देन थाबा महसुस लावन मसुला जयमसी तथा नमस्कार लासु खेफुला कार्यक्रम स्पार्क माई फेट तथा जीवनला छ्याङ्गदेला श्रृङ्खला अङ्क 40 रंग स्वागत मुला नियोग तामाङ हाइमै हाइमैमा याङसे बेनन भन्दा लानन माया लभा मिगदे याङला लाग्री बेनन भन्दा महत्वपूर्ण तामकदे जेरी याङला तिङ लगानी लमुला थेनिगदे हाई मन्द मन थेराङ मन भावना गदे अपिन मुला वा तावरी हामला थेनिगदे से हाजी भई दुईरी याङना माया लमुला रङमा माया आलामुला देन याङला थेनिगदे देन घनिष्ठ सम्बन्ध मुभा तसै दारिमथे सम्बन्ध जिनबा मुला या मि थेनिगदे से दारिम चु सेम आलाबी वा निर्णय लबा कारण से जुवा जहाँला सदस्य वा विशेष रोल सिवा कारण से थेनिगदेला प्रस्थान से याङ द असहाय महसुस तमुला दरेम याङ देन याङला नुप्पा भावना गदे देन चिन्ता गरे साँझ लबा तिगै आरे थेरङमा अवस्थरे याङ तिगा लाला सम्बन्ध गदे हाइमा दमन याङसे सेमलबा अनुसार चलब अदमुला जब थेरङमा तमुला चुसे याङ द एक्लो देन ख्लाबा महसुस लबा लानन दुख अवस्थरी ख्लामुला चु याङसे महसुस लबरी हाम्बा बेनन भन्दा आजीबा भावना गदे मध्ये याकर्की हिन्बा चुला उपचार तिगा हिन्बा सम्बन्ध गदे हाइमा दमन याङसे सेमलबा अनुसार चलब अदमुला लानन मिगदेसे रङला तिङ्री मुबथे शून्य तारा हटाउलासी योनन सन्दो हलाइद मनबा छोनोट लमुला तसै जब चु छार सम्बन्धसे गे आलामुला विषम दोषी निराश तमुला ठिक मुला कि जब देन आजबा निनोन दुईरी याङ हाइमा दमन भरोसा लाउरी हाम्बा याकर कि जखिन सम्बन्ध मुला जब चाबासे देन थे याङला आवा परमेश्वर देन याङलाई सुख्रिस देन छ्यामला सम्बन्ध मत्ती 28:20 ओथे नाइ एनी गदे दा लोप देन कुल जम्मन्तम थेनी गदे हेर्नु लाउ बिसी लोपको च्यागो परमेश्वर से जम्मोलिङ जम्मन निगदेला निसाब लबा दिन दो नए नोन ए ना एनी गदे देन छ्याम नोन तला यसु याकर कि जखेन मि मुसुला जोसे रङदा हाइमा खासेला आरे ना सन्दो हलाइला बारिरी रङदा थे बाचा लब्री अहम चु संसार थेरङबा मिगदे सिप्लिङमा मुवा जो उत्सुकता से रङ हनङ दोला बिमुला तिगा थेनिगदी रङला रो दोब्री से मुला तसै थेनिगदेला मनसाई शुद्ध आरे थेन्दे जब रङ दिन कदेरी भरोसा लसुला थेनिगदी रङला तिङ्री पाइला टेक्टी मुला थेन्दे रङदा रङला दुःखरी चिबरे खासुला यदि रङ याकर कि मेवा वा माया आयाङ्ब महसुस लवन मुसुला विषम यसु ख्रिस्ट देन छ्यामला स्वर्गरी रङला भविष्यरी रङला विचार केन्द्रित लस्युगो कलसी तिन अधेला एक लेन्जे चार एनी गदे ख्रिस्ट देन छ्याम नोन शिवगेम शोभा मुभा हेदवासेनमा स्वर्गरी मुभा चन्दो निगदे स्वर्गरी मुभा से गदे मैगो थेनन स्वर्गरी परमेश्वर दाइनी छपट्टि मूल थिरी ख्रिस धनछावा मुला एनी गदे छे जम्बो ल्युङ्री मुभा ताम गदेला बारिरी आहिन तर स्वर्गरी मुभा ताम गदेला बारिरी मनगो तिग्द विषम एनी गदे ख्रिस देन छ्याम नोन शिवा मुभा ओछे एनी गदेला जुनी ख्रिस देन छ्याम परमेश्वर मुभा ग्लारी थान्बा मुला ओछे एनी गदेला जुनी ख्रिस नोन हिन्ना थेदबासनमा ख्रिस दोषी फेखाबा दुईरी थेला ग्रेन युल देन शक्ति एनिगदे नोन थेदेन छ्याम नोन तला स्वर्ग थेरङमा ग्ला आइन्दा जहाँ रङदा मेला स्वर्ग थेरङमा ग्ला हिन्दा जहाँ रङदा पुराण रूबी मोसेला लामुबा पुराण रूबी माया लाला थेने हाइमदमा दिम रङबा महसुस लाला प्रकाश 21:3 नै ठिग्याम चुरङ विवा ग्रेन काई गिक थेजी च्यागो थेनी गदेन छ्याम धनशाला थेसे थेनी गदेला जम्मर मिथली फ्यासी पिन्ना वचे थेनी गदी दोषी खाइमै आसी खलाई दान सुर्ता आता खलाई नन आक्रा वचे खलाई दान तिगै दुख देन आता तिगद विषम अक्षर ताम गदे जा जम्मन मसी जिन्ना मुला येसु से याङद चिबला लागरी याकृति जब महाग पिन्बा जखेन प्रतिज्ञा अलासुनी रोसे याङदा दत्ते दोन महत्वपूर्ण तमला एक प्रतिज्ञा लसुजी रोसे याङला मिग्यम बेना मिलिखी पुइसाला याङसे दोषी हाइमा याकरगिन सिम आलाबा वा माया आलाबा महसुस लसुला नाचु बाच लबरी आहम कि रङसे चु लुइरी थनबरी सेम मुबा सम्बन्ध गरे हाइमा दमन सफलताला धानन पटक थिए असफल अदमुला तसै ना रङद तिगा बाचला बढी हामला विषम यसु ख्रिस्टेन रङला लागरी बेनान ताम जनालासी सफलताला थेन्दे रोसे रङद सन्दो हलाइदेन छ्यामला अद्भुत सम्बन्ध रिएन मार्गदर्शन लस्युला रो फेरि भरोसा लस्युगो पहिलो कुरान्ती 13:13 विश्वास आशाधीन माया छ खाइमै आमा तर चु सोम नङरी ग्रेन छ माया हिन्न परमेश्वर देन छानला याङला भविष्य द चुत्ते गेन शुभताम विवा याङसे रोदेन स्यान्दो देन जुबा प्रेमला अद्भुत अनुभव हिन्बा थे माया लिच्छाला दुई दोना याङसे सन्तना पिनबरे विश्वास योग्यताला आमेन रङ्गिला जीवन रे परमेश्वर जी प्रशस्त आशिष दिन्छु गई
1: प्रभावशाली बाइबल शिक्षक सोवन भिक्टर यम लिखित सन्देश याङला भाषारी न्यन्सुजी कार्यक्रम स्पार्क माई फेथ कार्यक्रमलाई बारे रङ्गिला केही प्रतिक्रिया सल्लाह सुझाव मुसाम घन्दा सम्पर्क लसिगो घन्दा फोन नम्बर मुला 98685353939 हस्त त्यो समय रिङ बिदा दाजी रङ्गी छङमदानु जयमसी नमस्कार।
3: Time check. It's 7 PM.
4: अहिले साँझको 7 बजेको छ।